0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैती बा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3, 4, 5, 6 और 7 गते।

0: टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैती बा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: नरेश दादू मैं तो अपना फलैटी की दौड़ती आ गई नो है भौजी कहाँ बाती
1: ऊ गोंडे में सुतल बाती बाबू चोली न भरी
0: भौजी कहाँ से काटू अपना हन हरक आदर पावे तो सफा सुखर बने गए बाती तर फिर पार्टी तो जा रहा ना अपना हन
2: यहाँ पोली ऊपर कटल हो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटा देर में खुआ पुमना हो
0: ना ते भौजी हमरा बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा हना जिन चले गई वो नरेश दादू एम्बुलेंस लेना समय लागे चेक था लगा के क्रो मोटरसाइकिल बाक लचे उहे में बैठा के भौजी है ना सर पर उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला तक खाना जात फे दी है न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अपना ठीक कली डॉक्टर और निकट सम गरमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए क्लास सपवा कटलक अंगन स्थिर बनिना प्रयास कर पठा तम्म कस बिलक रुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकल से फरफर करा दी बेरम्या अक्टेले से जहन समस्या बिना बिल कोसित बेरम्या न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबना फिर कठा असिक कर्ण से लक्त संसार में समस्या हुई सिक्ठा जेहीले करबेल सपवा दशलक शरीर का भाग काट खा फाक पौना अवस्था थे आई सिक्ठा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पट्टा में एक लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेरा सेक दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा कना हो बाबा के ओस्त बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक था।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुही
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477417।

0: टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3, 4, 5, 6 और 7 गति।

0: टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके बिहानिक 9 बजेक थारूवाचक खोज खबरमा अपनाउक स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनाउक्राब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो ओ नेपाली पात्रो मफेस सुन्ति रहल बाटे खोजखबर शुरूकारी खबर के मुख्य शीर्षक से पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लामसाल से फाप्ला क्रिकेट रंगशाला के स्थलगत अनुगमन सुदूरपश्चिम के डीआईजी ओम राणा के सरुआ सानुराम भट्टराई ऐना अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी पाछ टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख नगरजी से पत्रकार सम्मेलन ओ फिफा विश्वकप 2026 के चौथो खेल में अमेरिका पहिलो हाफ में 3 गोल के अग्रता आप खोज खबर विस्तार सुदूरपश्चिम के डीआईजी ओम राणा के सरुआ हुलबा राणा के सरुआ पाछ वहां के ठाउँमा सानुराम भट्टराई ऐना हुलबाट नेपाल प्रहरी के 4 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी के सरुआ कैगिलबा गृह मन्त्रालय से करगिलक निर्णय अनुसार विभिन्न प्रदेश तथा विभागमा हुकहन के जिम्मेवारी हेरफर करगिलक हो सरुआ सूची अनुसार सानुराम भट्टराई हन सुदूरपश्चिम प्रदेश मन ओम अधिकारी हन मध्य प्रदेश मन गोविन्द थपलियाहान उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा खटाइगिल्बा वस्तक ओम राणाहान अपराध अनुसन्धानके विभागमा सरुवाकै गिल्बा राणा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयके प्रमुख रह नेपाल सरकारके पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लामसाल शुक्रबार फफला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला तथा स्पोर्ट भिलेज परियोजना के स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण कर्लबाट परियोजना के निर्माण कार्य हन थप तीव्रता व प्रभावकारी ढंग से आग बढ़ना उद्देश्य लेकर करगिलक भ्रमण के क्रम में मंत्री लामसाल परियोजना निर्धारित समय में संपन्न हुईना विश्वास व्यक्त कर्लबाट वहां फाफला परियोजना सुदूरपश्चिम प्रदेश के खेलकूद विकास के संग पर्यटन प्रवर्धन और आर्थिक समृद्धि मन महत्वपूर्ण योगदान पुगेना बटुलेबाट सरकार विगत 30 वर्ष आग सिफारिश होकन हालसम्म कार्यान्वयनमा आइने सेक्ल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग सरकारके तत्कालीन पूर्व सचिव रामबहादुर रावल के प्रतिवेदन 2052 कार्यान्वयनमा लैजिना हुलबा मन्त्री परिषदके बैठक से ऊ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत से सरकारके नाउँमा जारी कैगिलक निर्देशनात्मक आदेश न आधार बनाकर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजिना निर्णय करगिलक हो संघ सर्वोच्च अदालत के ऊ आदेश न टेक्कन देशभर रहलक सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा के व्यवस्थित अभिलेख लगत राखन ओसिन जग्गा के संरक्षण करना निर्णय फे मंत्री परिषद बैठक से कलबा मंत्री परिषद बैठक से यी दुनू निर्णय कार्यान्वयन के लाग भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय हन निर्देशन देलबा मंत्री परिषद के यह निर्णय संग 2021 साल के नापी के आधार में रावल आयोग के प्रतिवेदन से समेत गिलक तत्कालीन काठमाण्डौ महानगर क्षेत्र के 35 ओडामन अतिक्रमण हुईलक सक्कू 1,859 रोपनी 14 आना 3 पैसा 3 दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली करना डगर खुललबा सर्वोच्च अदालत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख बलिराम चौधरी न काम नै गर कहल पाछ कार्यवाहक नगर प्रमुख रामबहादुर नगारजी कार्यकक्षमा पुग पत्रकार सम्मेलन कर्लबाट पत्रकार हुकनसे बातचीत बटुइटी नगारजी अदालती आदेश के सम्मान अनुसार कार्यभार सम्हालक बटुइलबाट वहाँ सकुहन समेतना समन्वयकारी भावना के संग काम गर कर्मचारी हन सहयोग गर आग्रह कर्लबाट दलगत स्वार्थ हो सनाहकट मसी स्थानीय सरकार संचालन हुई निसेकना बटुटी विधि के शासन स्थापित करना प्रतिबद्धता व्यक्त करलबाट कार्यपालिका 2082 फागुन में रामबहादुर नगारजी हन कार्यवाहक नगर प्रमुख चयन कल रहकलसे 2083 जेठ 14 गते बैठक कार्यपालिका बैठक के बहुमत से बलिराम चौधरी न कार्यवाहक नगर प्रमुख तोक्ल रह। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछाई नेनी बाटी सुन्तिरहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिण्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585808।

0: टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

सर्वोच्च अदालत माओवादी से संचालन करगिलक सशस्त्र द्वन्द्वके क्रममा भर्ती करगिलक बाल सैनिक हन उपयुक्त पर्याप्त परिपूरणके व्यवस्था कर सरकारके नाउमन आदेश जारी करल बा। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल, शान्ति सिंह थापा के पूर्ण इजलासे बाल सैनिक के पहिचान परिपूरण ओ क्षतिपूर्ति के सम्बन्धमा परमादेश आदेश जारी करलक हो। अदालत बाल सैनिक भर्ना करलक मन तत्कालीन नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ओ डाक्टर बाबुराम भट्टराई के उपर फौजदारी अनुसन्धान हुइपना माक करल अनुसन्धान जारी कर अस्वीकार करलबा। लेलिन वेस्ट समिट के रीतमन सर्वोच्च बाल सैनिक हन फे सम्मानपूर्वक पहिचान दिहेपना आदेश करगिलक हो। अदालत राज्य से जारी हुइना दस्तावेज ओ अभिलेख मन अयोग्य बहिर्गमित जसिन शब्द प्रयोग नै करफे परमादेश आदेश जारी करलबा। सर्वोच्च के परमादेश मन कैगिलबा निवेदक हुक्र व निज हुकन से जोरगिलक मनेन्ह सम्मानपूर्वक पहिचान देना न्यायचित देख जैना आफ राज्य के निकाय द्वन्द्व से प्रभावित सेनामा समायोजन हुई नई सेक्लक रीत निवेदन जसिन मनिन हन राज्य से जारी हुईना दस्तावेज अभिलेख मन अयोग्य बहिर्गमित जसिन अपमानजनक पहिचान हुईना खालके शब्द प्रयोग नै कर नै कराई कैक ऊ हटसम्म विपक्षी के नाम प्रतिषेध मिश्रित परमादेश आदेश जारी हुईना थहर करलबा। फिफा विश्वकप 2026 के चौथो खेल मन अमेरिका पहिल हाफ मन 3 गोल के अग्रता लेलबा। अमेरिका के लॉस एंजल स्टेडियम मन जारी खेल मन घरेलू टोली पारवांगे विरूद्ध पहिल हाफ मन 3 गोल करलखो। खेल के 7 मिनट मन आत्मघाती गोल मार्फत अमेरिका पहिल अग्रता लेल रह। वाकर पाछ 31 मिनट मन फोरलिन बालोगुन गोल करती अमेरिका के अग्रता डोब्बर बनाएल। पहिल हाफ के इंजुरी समय मन फोरलियन नई पहिल व्यक्तिगत दोस्रो गोल करती अमेरिका के अग्रता आनान तेब्बर बनाएल। इसे आग हुईलक पहिल सह आयोजक कैनाडा फिफा विश्वकप 2026 के आपन खेल मन फोस्निया ओ हर्ज गोविनिया से एक एक गोल के बराबरी खेल करती प्रतियोगिता के सुखद शुरूआत करल रहा। ई समाचार के संग खुश खबर ओराइल जेती जेती खबर मन मुख्य शीर्षक फिर से। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लामसाल से फाप्ला क्रिकेट रंगशाला के स्थलगत अनुगमन। सुदूरपश्चिम के डीआईजी ओम राणा के सरवा सानुराम भट्टराई ऐना। तत्कालीन अंतरिम आदेश जारी बाछ टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख नगार्जी से पत्रकार सम्मेलन। ओ फिफा विश्वकप 2026 के चौथो खेल में अमेरिका हन पहिल हाफ में 3 गोल के अग्रता। लीता आबपला थारू भाषक समाचार अत्रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुही, टीकापुर बाजार में देखनु तुही।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: लुबाट कसरी बच्ने?
1: बाहिर निस्कदा टाउको, कान र गर्दन कपडाले छोपेर हिँड्नु पर्छ वा सिधै सूर्यको किरण छालामा नछिर्ने तर हावा छिर्ने खालका कपडा लगाउने।
0: खेतबारीमा काम सकभर बिहान वा बेलुका मात्र गर्ने।
1: बिरामीले पटक पटक गरी पानी पिइराख्नु पर्छ।
0: कहिले पनि खाली पेट बस्नु हुँदैन, यसले समस्या थप बढ्न सक्छ।
1: गर्मी मौसममा काँक्रो, प्याजको रस, बेल, आँप, कागतीको शर्बतको सेवन गर्नुपर्छ।
0: चिनीको मात्रा बढी भएका झोल पदार्थ बढी नपिउने, जस्तो चिया, कफी, सोडा जस्ता पिय पदार्थ।
1: नरम मुलायम सुतीको कपडा लगाउने।
0: व्यायाम गर्नु पर्दा बिहान बेलुका रुखको छहारीमा मात्र गर्ने।
1: र बालबालिका, वृद्ध वृद्धा तथा दीर्घ रोगीको विशेष ख्याल गरौ।
2: टिकापुर नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: तहारा राजा जी का दिलुआ टुट जाए।
4: उफ, बल्ल घरक भिटा निखौराइदा।
5: मुस्कान रिछाई, घरक भिटा हामी निके निउराइ छौ कि का? खेतो मस्ता खालन कला मिनी लै जाइ पर्ना रह।
4: आब उराइदा जान्छे बादा।
5: ले ले, मै मिनी बना कर रही दिया, तू लैदा दियस ना।
4: हाँ बिठा दाई। ओहो हेरो, यहाँ भित्तामा त ढिला पो भा, माथिले सब दिए पर टिका हाम सब दिउ। अय्या दाई, सब काटरल
5: दाई, खै खै कहाँ काटे छै?
4: यहाँ दाई, यी दाई नाजम काटरल।
5: अरे ल्याउ हाली क्यु बाटो, म चाहिँ मुस्कानबाट सब काटरलस, ल्याउ हाली।
6: काबिल काकी, काबिल
5: हेरो न राकेश, मुस्कान न सपुवा करलस कर
6: ना। त्याओ काकी, तो मुस्कान निया त्या का स्थान थक बैठो ना। बेन काकी, मुस्कान न स्वास का न सुटाई, हल सब निका राखना।
5: बैठा भैया, मुस्कान छाई, स्वास का सुटो ता।
4: बैठा।
6: ओ काकी, मुस्कान घलक लुगा, घर गहना, निकब जैना मेकअप फांसर बना दी ता, वो हाथक चुरिया की निकाल दी ता। वाकर कटला छाट भर नहीं चलाख ना।
5: बैठा भैया, सबो कटला छाक आंदर पांदर चीर कर इंजेक्शन ले तान कर अथवा मुंह ले चूस कर बीस पोर निकले ना हो कि?
6: नहीं नहीं काकी, सबो कटला घाव आंदर पांदर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई, वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई, पानी के नहीं बुझली।
5: उसी नो कल से धर मेरा लान खा वही निटार खा वाकर सबो कटला ठाम और लगा दी उठा ना नानू।
6: उफे नहीं हुई काकी, घरेलु उपचार जस्ता कि झरबैरा, जंगली खरबुटी ओ जडीबुटी फे प्रयोग गराउने हुई बुझली।
5: बुझ्नु नानु बुझ्नु।
6: पहिला काकी, रामेसना मोटरसाइकल लेखाएका हिट झट्ट से झट्ट साधन खोजक एन्टीभेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा लैजाई सेकजाई कलसे मुस्कान हुन झट्ट चुम्मर बनाई सेकजाई। दादाई का अपना बेन ओटरा बेलासम हमार गाउँ से फोन एन्टीभेनम केन्द्र लगा पर थकाई का स्नेकबाइट नेपाल डट ओआरजी का वेबसाइट खोलती कर तुम्हें। हाँ दाता अन कई का हेरा पुरल। हाँ हो स्नेकबाइट नेपाल डट ओआरजी वेबसाइट फिर खुल। हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में को सर्पदंश उपचार कई जिना रही था। हो वहाँ ले जाए पुरल मुस्कान होना।
5: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई ला।
6: लेव लेव लेव काकी, मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बिच्चा में बैठा रही का झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सेक जाए कला से मुस्कान हना बचाई सेक जाए।
5: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहां कौनो सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली।
7: मुस्याकल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझन साफ फिर काट से ठा संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकल से हुक्र सपो विषाण अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सहयोग उठा।
5: यदि समय में उपचार कर से दिल कल से सपो डसलक मने यहाँ न बताई सक दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दिखा सपवा डसलक मने यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली। यहीले उमनयक जिनकी बचाए भारी मदद करता भर पर्ना वो सही जानकारी क्लाक ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैथा पत्ता लगाए क्लाक आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए छेक दिखा।
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: भव्य आयोजना हुई जैतीबा नाच गीतबाज परम्परागत खानपिन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम
1: टीकापुर बाजार में देखो तो हिम टीकापुर बाजार में देखो तो हिम
0: आई हमार संस्कृति जगाई हमार पहचान है और उजरार बनाई स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7

बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लिहा अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: काटी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग्यो
4: मैले चाइनिजो माइलो त्यो बर्बर बर्बर कराइरहेको छ के भएको छ तलाई
3: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भन्यो म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
4: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीबाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
5: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
6: सम्पर्क स्थान चण्डीबाई मेडिकल स्टोर ढकलला रोड टिकापुर कैलाली

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3, 4, 5, 6 और 7 गते।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, कहा का कना हो बाबा के वस्तु बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गया।

0: उडोकमसे वहाँ झिंगरान दिदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कब बुलर का कापी हरी थी ना कब पेंसिल हरी थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटी ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकटुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: आई गई क्या आज तो पहला नौकरी को पहला महीना तनखा खाईकन आए की होली मेरी चेली
4: तनखा खाईकन होइन बुवा तनखाले भोलिका दिन चाहिँ ढुक्क पारिकन आएकी छु हो भन्या बुवा पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु सिटिजन लाइफ नि त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन् भाइका लागि बाल भविष्य योजना तमिरे आमाका रिटायरमेन्ट समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना वहाँ चाहिँ मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन तसाईले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे
3: ठिक गरिबा आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ
4: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त होइन बुवा सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01597021772 मी सम्पर्क हरे

0: यदि मुस्कट और ताज हेरो तो पुरवा
1: वह तो हेर बुढ़िया बरखा समय थे बा पखारिक मुहकर उपकर बाकी मुस्वा आयल कला से आबा मुस्वा खुशी सब वह फिर आई सकता
0: ओहो होनी का क्या तो समझनो बरक अंदर पादर जोखास से बाहर से कस्ता का पहिल बा काता पर ना रहो
1: हाँ अस्सी करी हेर बुढ़िया वो सिंहो कला से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका का बासी खाई दूसरा सर परियार मन मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल फोहर का व्यवस्थापन कर दी तो नहीं हुई
0: हुई था वो बुढ़वा अति डाला मदर ध्यान घास फोहर झपास भी था उमा काप नुक्का बैठल रह सकते ना
1: वह और से तो कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर से सांप मुस्कुसू के पैठनी सेकना में चबरदार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफार वो सफा हुई से सांप ऐना का उस्तह कम हो जाए
0: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
2: सांप बरखा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था इ मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना पीला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग्घ आई सक
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लग्घ उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैती बा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3, 4, 5, 6 और 7 गते।

0: कबू का पी रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ हूँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे, वहाँ झिंगला दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में, रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: घर त जेन तेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला, काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने,
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ, काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
3: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका,
4: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
3: अब त म ढुक्क।
5: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरा पारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर मोहनदास भाट,
4: मोबाइल नम्बर 98481-43426, जमरा पारी, टिकापुर, कैलाली।

0: 98537 38, 91561446, 98483431 र 98483436777।
1: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू। यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन, बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही, तोर समस्या फैन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त बाउ, के पाउँछ त्यहाँ?
1: ए त्यहाँ त्यहाँ छ नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
2: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
3: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
4: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
5: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स।
6: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
4: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484463673 र 98164602004।
7: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
8: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
7: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
8: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
7: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
8: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
7: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
8: ईसीजी सेवा,
7: डिजिटल एक्सरे सेवा
8: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
7: फोन नम्बर 98484263659 र 98842473159। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर, जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
9: रजनी वहाँ 62 नम्बर लट्ठी बा देखाऊ त, हत्त लेखाऊ त।
10: मुर्गी दाना देना जा रहा, काकर लट्ठी खा दे दी अपना।
9: एक तो चपावा का मुर्गी न खा रखे लत्ती से डुरेले से बक्सा की आनो हारी छत्ता
10: तापन घिसका ही चलाई नहीं हुई थी, नहीं तो अमन दस श्याकर बेन घर भीतर आए लागी कलटी भगई दी।
9: पारक भीतर पेट का मुर्गी मुआदी व खाड़ी कहीं का भगाई खुद लखो का
10: आरम कीड़ा फटिंगा मुर सांप सिर निचा कर कहीं का फलाम को जारी लगा बात तप्पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं सेखी बेन अपना ना दाखी डूर बिना
9: हो बिना था का करना हो तप्पा देखती की जन नागर लगना रही था देव तप्पा तो अपन ना घूम का बारी वो कल गिनता
10: हमरे चल सापन से डरे ना नहीं बनी मुखरखे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई लगी पति रक्षा करस लाख व अपन बचाव करस लाख साम दस ना कर था
11: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई व नी जीस के साप मने देख कर डरे था नी चलाख दूर रह लसी साप नी दस्त तर मुखर खेना खाज बाहर निस्कल जाना बस घास काट बेर ख्याल बेर ज्ञान बेर छू बेर से मन मही मारक लाग बाट कना सबस का पट्टी रक्षा कना क्रम साप दस लाख अर्थ मन सापन व्यक्ति की मारक लाग रह उसी का कर बे फिर साप दस लाख अर्थ
12: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेट।
13: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।

0: सर्पदंश अथवा सापन का कटाई से बच वो सापन का कटाई से हुई सेकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विषय में आम संचार अंतरक्रियात्मक रेडियो केंद्रित अभियान जीवन संदेश। नमस्कार। सर्पदंश अथवा सापन कटाई से बच ओ सापन का कटाई से हुई सेकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विषय में जनचेतना जगैना उद्देश्य लेख अंतरक्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम जीवन संदेश लेख मई पुष्पा
1: ओ मई खेकराज आईबाटी चलन चलती का बोली में सापन का कटाई कई झूल पड़े बोले फे सापन का कटाई हना सर्पदंश फे कना कर दी था। आज कार्यक्रम का पहला बैठक आज हमारा सापन का कटाई से बचत नाक सापन का छनछन लिखनेर कोई साफ सक्रिय बिना समय विषय में खाया पाइपरना काकरजर विभाग का विषय में छलफल करने बाटी।
0: सापन का छनछन लिखनेर नेपाल में पाजिना बिखा जातक सर्प वो हिकनक सक्रिय बिना समय विषय में जानकारी दिए आज हम से बाट सर्पदंश विज्ञ डाक्टर संजीव कुमार शर्मा।
2: हामीले भन्दा गोमन को प्रजाति करेत को प्रजाति र बाघे सर्प रसल्स भाइपर को प्रजातिले चाहिँ मानिसको मृत्यु हुन सक्छ। यिनीहरू चाहिँ विशेष गरी तराई भेगमा पाइन्छ।
1: यी विषयमा छलफल गर्दा आज हाम्रा बर्दिया जिल्लाको बिन्दु वो बाँके जिल्लाको होम कुमार सेफे परिचय गरिने बाटी। विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत यी दुनूजना आफन अध्ययन वो अनुसन्धानको क्रममा तराईको मेरमेरी ठाउँ वा समुदायमा पुग्न कर्लक वो सर्पदंशको विषयमा चेतना जगिना कर्लक बाट सुन्ने बाटी।
3: ए होम कुमार अहिलो लेउ बैठो आज हमार फेसबुक लाइव में सर्पदंश विषय में कौन चाहिए विषय में जानकारी देना हुई कैठो तैयारी व अनुसंधान करती रहा।
0: हर साल बर्खा छैक अर्थात पानी न समय में सापन का कटाई घटना ठ्यूर हुईना करता अमीन विशेष कई नेपाल तराई भूभाग में असिन घटना ठ्यूर हुईना करता
1: जाल छैक में ढ्यूर जसिन बिलिक भित्तर बैठना साहब बर्खा छैक में बिली में पानी भर लगलग पा भूं मसिन निकल भी वो वर्षे अस्थ समय में खास कई तराई क्षेत्र में सापन का कटाई वो वेमसे हुईना मृत्यु विषय में ठ्यूर सुन्दी था।
0: सर्पदंश का दृष्टिकोण नेपाल बड़ा जोखिमपूर्ण क्षेत्र मान्दै था न ठ्यूर गर्मी न ठ्यूर जार हुईना वर्षे नेपाल हावा पानी सापन कला उपयुक्त हुईना विज्ञ हुकन कहाई बाटन याकरसंग बर्खा छ्याक हुईना वो गर्मी मौसम में पानी पर्ना फे सापन का बसोबास कला अनुकूल बना दे।
1: सर्पदंशक दृष्टिकोणले नेपाल बड़ा जोखिमपूर्ण रहलक ओ सर्पदंश से पुगाइसक्न भारी मानवीय क्षति बावजूद नेपालमा सर्पदंशहन गंभीर स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लेलक निपादैत
0: तर कुछ महत्वपूर्ण बाट न ध्यान देना हो ओ सावधानी अपनैना हो कलशे सापनका कटाइसी पादसेतिठा अत्रकेला निहोक बिखा साँप काट सेक्लक अवस्थामा फे कटलक मनैहन भुइँमा सुताख ठ्यू हिला निदेख कटलक वा आन्जर पान्जरी भागमा एकुफे निचलाख समयमा चु लगभग उपचार केन्द्रमा पुगाइसे बिल कलसे उहीन बचाइ फे सेक्दिठा
1: याकरसँग आफन बसोबास रहल क्षेत्रमा पाजिना सापनको मेयर वो कुन साँप कटरा हानिकारक बाकन थाहा पाएसे बिल कलसे फे सापनको कटाइसे हुइसेकना क्षतिसे बच सेक्दिठा आज हाम्रा गाउँघर आन्जर पान्जर डेक पर्ना साँप मध्ये बिखा सापन कसी चिन्ह वो कसिन सापन से कसी बचनाकना विषयमा बातचित गर्दै बाटी
0: ये सन्दर्भमा हाम्रा बर्दिया जिल्ला कुछ श्रोता सहभागी हुकन आपन समुदायमा यी मनसुन वा बर्खा छ्याकमा उहाँ होक्र कसिन कसिन साँप देख्न कर्लबाट कना विषयमा पुछ बाटी।
4: अरुणा चौधरी हाम्रो बस्तीमा त अन्डिस पहुल कृष्णा तरठै अनि करेट डोमिनिया अनि पानी पहुल उस्तैका डिरी साँप अब घाम महिना लागल अब एक दुई चो झरी परि दाना पानी परि अब धीरे धीरे बर्खा लग ऐना क्रममा जेठा सारो चाहिँ यी साँप देखा पर्थे।
5: मोर नाउ मनोज थारू धमला सपुवा देवी सपुवा गरैसा ओ मैहरुवा देखा पर्ले कोबरा अत्रै सम्म देख्ने आन्थे वैशाख जेठिन पहिले चोट पानी वर्ष ऊ टाइम से निक्रेक सुरु गर्थ यी असोज कार्तिक सम्म सक्रिय रथै
6: रामदार थारू मार बस्तीमा केटा रथे रथै गरैचा रथै बुरा गरैचा मजगी डुवा फेर थाइन वैशाख जेठ मर से दूर कर दे थाइन निकरना पानी परा तब से शुरू कई दे थाइन निकरना भालो कार्तिक सम्म रथै
7: राम सायन थारू वर्षा याममा नै प्राय जसो साँप देख पर्था जस्तो कि फिर डारा फिर देख पर्था गरैचा हाम्रो थारू भाषामा कति करे देखा पर्था अनि बाँकी चाहिँ पानी साथ पदिरहेछ।
8: मनो विजय कुमार थारू गरेसा सपो डेट पर्थाए और फेटारा और डेरिसा पनसपोवा मैहार पानी वर्षा टप जस्तै गर्मी अहिले गर्ने बर्खा अहिले गर तब ऊ बेलामा पनि हिसाब देखा पर फेटारस अब कब कब बेला के देख परत अब यसरी त खासै नै देख पर्छ कब कब के देख पर
1: हाम्रो भर्खर सुनली बर्दियाको हाम्रा श्रोता सहभागी मसे कुसमने ढ्यो जसिन देख्ना कलक साहब गरैचा कैली जसिन साप हुई कलक रसे कुसमने साप ढ्यो देख्ना कलसे फेर सापन चिन्ह निशेक्लक बटुल
0: अपना बैठक ठाउँ समुदाय वा क्षेत्रमा पाजना सापनका प्रकार ओ उ साप हानिकारक हुई कि निहित कना विषयमा जानकारी लिन महत्वपूर्ण बा
1: विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार नेपालमा करिब 89 प्रजातिक साँप पाइन्छ जहिमध्ये करिब 17 प्रजातिक साँप विखार वा खतरनाक मानिन्छ सर्प दंशको घटनामा सबसे ढ्यो डुङ ओ गरिचाका दशाई बिना करलबा
0: करेचा ठेउ जसिन राठ सिटल ब्यालामा ठा निपैना मेर्सी दसना कर्ठ कलसे डोम सामान्यतया दिनख काम गर्न समयमा वा सन्ध्या बिहान दसना कर्लक पाजिठा धरानक बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थित सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रक सर्पदंश विशेषज्ञ डाक्टर संजीव कुमार शर्मा अनुसार पूर्वी नेपालमा डोम ओ पश्चिम नेपालमा गरेचा सापनक कटाई ठ्यूर हुना करलबा
1: हाम्रो डोम ओ गरिसक बाटकरली याकसँग औ कसिन मेरिक साप हाम्रो देशमा पाजिना कठ हाम्रो गाउँघर आन्द्रपाल्दर डेकपना साप मध्ये बिखा सापन कसिक चिन्न ओसिन सापन से कसिक बच्नाकना सन्दर्भमा धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत डाक्टर से बातचित गर्नुभाटी
9: दर्शक यी सर्पदंशक मौसममा खास गरी सर्पसाधारण उग्र कसिन कसिन मेरिक सापन से नेपालमा मानव जीवनको क्षति उठा मनेन अपाङ्ग हुइपर्था अथवा मनेन मानसिक डर ओसिने कट्रमा ओ मनेन एक मिर्से सटेना कथा यी साँप मुख्य कन कुन जातको भिट ओ हाम्रो भौगोलिक भूभागमा कसिन कसिन रठ ऊ सापनक लाग संक्षेप म जनादिन
10: नमस्कार धन्यवाद पहिलो कुरो त यहाँ
11: नमस्कार धन्यवाद पहिला बात त म यहाँ हुकन संख्या कह चाहु ऊ संख्या कलक का हो कलसे नेपालमा हर साल करिब करिब 40,000 मनैन सर्पदंश हुइठा ओ ओही मसे 3,000 मनैनक मृत्यु हुइठन यी वैज्ञानिक तवरले नेपालभर तराई क्षेत्रमा कलक सर्वेक्षणक परिणाम हो ओ यी सर्पदंश करैना साँप झुर खालक हुइलसे फे यहाँका कहलसक अङ्गभङ्ग करैना या मृत्युका कारण जो बन्ना साँप चाहिँ ढ्युर्नि हुइट जस्ता हाम्रा कहबेर डोम प्रजाति गरैचाका प्रजाति ओ बाघे साँप सेल भाइपर प्रजाति चाहिँ मनैनक मृत्यु हुई सेक्ठा निक्र विशेष गरी तराई भागमा पाजिठ अब हाम्रा तनी उचैयावर लागि पहाडी भेगमा पहाडी भेगका बात करबेर कैली साँभर रठ जोन देख परबेर काल रठ मुह नाकक बिचमा एक छोटी छोटी खोल्टी रठन तापक्रम मापन गर्न यन्त्र हो हाम्रो होइन पीट कठी ओसिन हुइला कोर्से हुकनहक नाउ फे पीट भाइपर रह गैलक हो ओहु काल जसिन निदेख पर्ना गुरुबे साँप रठ जेहेन रसेल भाइपर से फे झुक्या जाई यी सापन से चाहिँ काकरकी रक्त प्रवाह कैख रकत ढ्युर भक मनैनक मृत्यु हुई सेक्ठा उह फे ऊ ढ्युर संख्यामा निरठ तर जसै दसल ठाउँ हाँसामा दसल कलसे हाट कुहना ग्वारामा दसल कलसे ग्वारा कुहना हुइठा ओ आप जाई पहाड से ऊपर अर्थात हिमाली फेगमा पहाड से ऊपर विषाह साँप निरठकना निहो ओसिन निहो वहाँ हिमालय करेटकना महा विषाह साँप पाजिठ असिक सरासर ह्यारबेर हाम्रा देशमा तराईमा सबसे ढ्युर डोमो गरैचा जे पक्षघात कराइसेक्ठा सास फेर्ना यन्त्र हुन प्यारालाइसिस कराइसेक्ठ रक्त श्राप कराइसेक्ना रसेल भाइपर अठकलसे पहाडमा पीट भाइपर चे रक्त श्राप कराइसेक्ठा देहीमा कटलक दसलक भाग कुहसेक्ठा असिन मेरिक सापनका बिगबिगी भाग
10: रक्त श्राप गराउन सक्छ र शरीरमा टोकेको भागमा दसैको भागलाई कुहिन सक्छ त्यो सर्पहरू बिगबिगी छ
9: डाक्टर साहब तम नेपालको भूभागमा 40,000 मनिन साँप कट्ठ अथवा डर्छ कली ऊ 40,000 मध्ये कटरामणि ज्यान गइठ अपाङ्गता कटरामणि झेल्छ
10: 3,000 जनामा सर्पदंश
11: 3,000 जनामा सर्पदंशक मृत्यु हुँदा कलक करिब करिब 5 जनामा एकजना कोना न कोना मिरिक अङ्ग दुःख पैना जस्त एम्पुटेसन ग्वारा काट पर्ना अङ्ग्री काट पर्ना या त घाउ नम्मा समयसम्म हिचो खैना 6 महिना 1 वर्ष भर्खरमै छापामा 60 वर्ष घाउ देखल रहनु एक ठो सर्पदंशक गर्मिया ओ मानसिक तनाव हुइना जोन हाम्रा मानसिक रोग कठी ऊ 10% हुन हुइना तथ्याङ्क बा
10: हुने त
9: एक बात यी सापन से दस दिन मनी मध्य महिला वो बाल बालिका वस्ने कैख कौन मेरिक आर्थिक हैसियत को हुईलक मनी दस
10: यो अति नै राम्रो प्रश्न
11: यी बहुत मजा प्रश्न करली सर अपना म यहाँ दुई ठो बात कह चाहू एक सर्पदंश हुइना मनै कलक आर्थिक रूपले अति कमजोर हुइलक मनै कैठन जे भुइयामा सुट्ठ छानी खर ठन या त कटकौरा खैना सुटना कुन्ती एक ठाउँ असक रठन ओ भुइयामा सुट्ठ या वहाँ खेती किसानी कर्थ बनुवामा काठी कर जैठ ओसिन वर्ग ना ठूर सर्प दंश हुईठन ओ ओसिन मने छोटी आर्थिक भार फे बड़ा हुईठन हमरा साला खाला का देखला बाटी कल से सर्प दंश हुईला ग्रहमियान एक खेरा बिरुवा कराई बेर $70 जत्रा लगता ऊ कलक ऊ भेक्का मने ऋण का हार का बिरुवा कराईना बात हो ओ वहां हुकर ऊ ऋणक झमेला में पर जैठा हमरा ओहेना डेट ट्रैप कठी आमतः मा अस्पताल मा रलक डाटा हना हेरखा बात करा बेर थारू मने ठूर सांप दसना करल रहा तर हमार तथ्यांक का देखला बाकल से जन्य वो लड़कन मा सर्प दंश ढ्यूर अर्थात 64% बाकल से मृत्यु हुई नामा 75% महिला वो बाल बालिका रहल बाट
10: 75% महिला र बाल बालिका हुनुहुन्छ
9: अब एक ठो भेक के बाट बटवाई हमरा तराई से फिर हिनाटा टमना दर्शा पहाड़ी भेक के बाट बटवाई सिख लिए जसने कुछ जिला सिंधुली उदयपुर ओसिंह का सुरखेत ओसिंह का मकवानपुर ये जिला ना तो तराई ना पहाड़ कहीं हमारे 22 तराई जिला भीतर नहीं पड़ा ये 4-5 छुट्टा खाल का जिला ये जिला में फिर सांपन का बिग बिग की संभवतः तराई नहीं हो कि नहीं होना
11: दानदान पहाड़ और चौहती जारबे चाहिए आप पहली सांपन का वर्ग ठूर पा रहे हो
10: सरपैर को वर्ग बड़ी पाई
0: हमार गांव घरक आंजर पांजर डेक पर्ना सांपन का प्रकार नेपाल में फेर्जेना बिखा सांपन का किसिम वो असिन सांपन से सुरक्षित रहना उपाय विषय में देलक महत्वपूर्ण जानकारी लाग डाक्टर संजीव प्रति हमरा आभारी बाटी
1: डाक्टर संजीव कहल सा झट्ट हरबे सबको सांप ओस्ट ही देख पड़े फिर मुगनक रंग चुईसा आग वो कपारिक आकार हिरख बिखा वो की नए देखन पहचान कर सी दिखा बीपी कोयला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सन 2013 में प्रकाशन करलक नेपाल का विषालु सर्पहरू नाउक पोस्टक अनुसार डोम पहाड़ी गरीचा हिमाली गरीचा कैली सांप आदो सांप अथवा छिमिरे साप हो बाघ्य साप अथवा सुस्कर नेपाल में ठ्यूर पादेन बिखा साप मध्य खुट
0: यी मध्य गरेचा प्रजातिक साप हमार देश में ठ्यूर पाजे रात का मने निदाइल ब्याल में हिंक दस सेठ गरेचक दसाई से लक्वा हुई सेठ ओसाय का डोम साप प्राय जसिन बिहानो संध्या जुन सक्रिय हुईना कर्ठ हो हिंक फाट फूले विशेषतः तराई वो गर्मी ठाव में ढ्यूर मात्रा में पाजेना असिन सांप दस लाख भाग सुईना बठेना ओ लक्वा हुईना कर्था
1: ओसे ख कैली सांप अर्थात पीत भाईपर हमार देश का पहाड़ी भूभाग में ढ्यूर पादे वो ई दस लकल से भारी कर रहा बठेना वो सुईना कथा रकट पाटी रोक रकट बहना हुई सकता बाघे सांप सामान्यतया हमार देश में एकदम कम खेल पादे तर हिंकरण दसाई बड़ा खतरा पूर्ण रठन हो अत्याधिक रक्तस्राप फिर हुई सकता
0: असिन सांपन का विषय में जान खस सर्पतंश जोखिम से अपना बची वो और जहन जानकारी देख सर्पतंश खटन हफे खटाई सर्पदंश अथवा सापन का कटाई से बच वो सापन का कटाई से हुई सेकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विषय में आम संचार अंतरक्रियात्मक रेडियो केंद्रित अभियान जीवन संदेश
1: आप लागी बर्दिया जिल्लक बिंदु वो बाकी जिल्लक होम कुमार का बट कोई वर विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बिंदु वो होम कुमार आपन अध्ययन अनुसंधान का क्रम में मेर मेरे ठाउं वा समुदाय में पुख सर्पदंशक विषय में चेतना जगेना खल बाटा
0: आज हम कहाँ कहिल बाटा कहाँ करती बाटा कना विषय में था पाइकलाक अब हमरा फिर लागी बर्दिया और
11: बिंदु का करती बात हो
3: ए हुम कुमार अइलो लेउ बैठो आज हमार फेसबुक लाइव में सर्पदंश विषय में कौन सा ही विषय में जानकारी देना हुई कैठ तैयारी वो अनुसंधान करती रहल का
11: हो का का बात भेटेलो टा अनुसंधान करब ये
3: ओ हो सापन का दसाई मौसमी रथा वो ढ्यूर जसिन बरखा छ्याक ब्याल में वो बाली फिटेना समय में सापन का दसाई घटना हुई ना करता बैहा वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण ले सापन का बसियारा नाश हुई गई थी दशा घटना झ्यूर भी लग पा दे
11: तो मैं बुझल अनुसार चाहिए झ्यूर जसिन सापन का दशाई हानिकारक नहीं रहा वह पे यदि सांप दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जाए पड़ता कई था
3: हो वो वर्षी अब हमारे फेसबुक लाइव का समय फिर हुई लागल आज फेसबुक लाइव में चाहिए बरखा छाक में हमारे तराईवर कसिन कसिन मेरी सांप देख पड़ना करता वाकर विषय में जानकारी दी ना हुई
11: हुईठा हुईठा बेन खा एक चोट हेरी और का बात अनुसंधान कई खा पट्टा लगे ला बाटो कई खा
3: ये हेरो
11: सापन का मेर वो साप सक्रिय होना समय ओहो तू तो खतरा अनुसंधान कर ला बाटो तो बिंदु
3: आप बरखा छाक शुरू हुई लागल बा बाली फिर बिटे ना डाला हुई बा वो अब है जो जानकारी निधे बिकल से मने कसी का सचेत हुई कहो तो
11: एकदम ठीक बात यह सापन का विषय में पहला महीन थाहानी हुई कोर से पश्चिम दुखा पहला रन हुई कहो ना
3: हो निका
11: ऊह
12: मै छोटी रहबे दाई डाँटल कैख पैरक कुरत्या मना दुकर रहे सपुआ रहना थानी पैनु दोसर था दस दारल महिहना तर तनिक दाई महिहना सपुआ दसलक देख दादी ओ ब्याला उपचार केन्द्र में लै जा दी दोसरा मज्जा से बिरुवा कराकत सुमर फिलक
3: होट ब्याला में उपचार पागल कलश सर्पडन से बचत देख रही तर का करना मर बर्की दीदी होना ब्याला में उपचार केन्द्र में पुगाइनी पैला कोर्से रागैली अब समझबे फिर कसिन कसिन लक्षा महीन कतरा मैया करत मही होना
12: आप बीच सकलक बात का विषय में कतरा सोचना हो थोड़ा झनखन कर बिना खमरा शुरू करलक हमार तराई जिला में सर्पदंश का विषय में जनचेतना बढ़ेना अभियान चाहिए अमन सशक्त तरीका चलाए पर था वो सबको जन सचेत थे बनाए पर था
3: ठीक हो वो सबको जना सचेत हुई कलश क्यूँ फिर सापन का डसाई मुह पर खबर सुननी पड़े
12: हो निका फिर हमारा इसका सर्पदंश का विषय में कसी का मन सचेत बनना कई तालीम देखा फिर एकदम मजा कर लेना हमारा
3: हो त ओहो तालीम लेख त होनी आम सर्पदंश का विषय में मन में समुदाय में सचेतना फैलाक लग जागर लगलग हो कि नहीं कहो त
12: पूरा हो निका वो असें का हमारा एक और जहन साथ देख रहा हमारे अभियान सफल बनाए पा था ना
3: उटा टू साथ ना देव कला से फिर साथ दी हम क्या कर की सर्पदंश का विषय में सबको जहन का चेतना नहीं हुए अकाल में जो जान गवाई पड़ रहा
12: वह ले तीन के बजे लागल फेसबुक लाइक का समय फिर हुई जाई लाइफ में जाई
3: हुई था जाई नमस्कार स्वागत बा आप नहु सकु जहन आजुक सर्पदंश संबंधी फेसबुक लाइव में मई हूँ बिंदु
12: ओ बिंदु संग मई थे बाटुना मई हूँ कुमार ओ मोर तरफ से फिर नमस्कार ओ ढ्यू ढ्यू स्वागत
3: ओ अपना जानकारी करा दारू की हमरा हर शनिचर दिन इहे समय में अथवा कही तीन बजे से फेसबुक लाइव में ऐना करती ओ अपना हुकन से सर्पदंश के विषय में छलफल करती अपना हुकन का प्रतिक्रिया फिर देना करती कह
12: वह वर्ष हमन से जोर गिल रवि वह आजुक छलफल में सहभागी के भी कना आशा सहित अब हमन से 44 जना संघरिया हुकर फेसबुक लाइव फेर का साथ देती बात कर से 3-4 जना संघरिया हुकन का प्रतिक्रिया फिर आशे कर बात
3: तर वहां हुकन का पठेलक प्रतिक्रिया पढ़ना से आग आजुक विषय वस्तु के विषय में जानकारी करना हो कि कुमार जी
12: हुईठा बिंदु पेन तुहा शुरू कर तो की
3: हुईठा वो संघरी आजुक सर्पदंश लाइफ में हमारा अपना हुकन सापन का मेल मुकुरा कट्टा बेला सक्रिय हुई था वो बाहर निष्कट कना विषय में छलफल करने बाटी हो न हुकुमार
12: हो निका वो वर्ष अपना हुकर फिर सापन का मेर था बा वो मुकुरा कतरा बेला सक्रिय हुई था कना विषय में अपना हुकन जानकारी बाकल से हमन फिर जनाई सीखने बाटी न
3: ओ श्रोता अब बरखा छाप का समय हुईलक कारण ले कर गेल सापन को बछारा में पानी भरना हुईलक से सांप बाहर सुखा ठाव में जाख बैठना कर
12: ओ कभु काल मनन का बैठना ठाव में फिर आहारा खुशी आपुक था वह हो ख हमरा एकदम चना को सचेत होना एकदम जरूरी बा होना बिंदु
3: हो निका वह वर्ष की हमारा सापन का प्रजाति के विषय में जन से मजा हुई था सांप कट्टा डाला बाहर निष्कट हो सक्रिय हुई था कई
12: ओ बिंदु कमेंट बॉक्स में हमन हमार को संघरिया होकर अपन विचार से बाटल बाट हमारा विषय से जो संबंधित बेन वहाँ हुकन का संदेश जो पहरना हो कि दूसरा वाकर पास बाकी जानकारी करेगी
3: वही हूँ कुमार ओ मित्र भावेश लिख बाट हमार झापावर तो ढ्यूर जसिन डोम साफ देख पड़ना कर था वो हर साल ढ्यूर मने जान फिर गवाई पड़ बाटन कई
12: संघरिया भावेश अपने प्रतिक्रिया कलाक ढ्यू ढ्यू धन्यवाद वो अपना कहला सा हमार गाँव घर और वहाँ कही खास कही था पूर्वी तराई का जिला में ढ्यूर जसिन डोम सांप देख पड़ना वा पा दिना कर था
3: वो डोम सांप का प्रजाति चाहे बड़ा आक्रामक हो रिसा स्वभाव कर था हिकर फाट फुलाई था हिकर खास के खा बिहान और संध्या जुन सक्रिय हुई ना कर था हिकन का दसाई ले लकवा हुई से था वह आक्रामक हुई कारण ले कर बेर फिर मित्र भाई बेजी कहला ढ्यूर मने जान गवाए पड़ रहा
12: वह वर्ष हमारा एकदम होशियार हुई ना जरूरी बा
3: वो ओसने को पश्चिमी तराई का जिला में चाहे ढ्यूर जसिन गरेचा प्रजाति का सांप पा देना कर था वो ये प्रजाति का सांप दसने से निबटाई फिर सकत तर आकर दसाई ने पक्षे घाट हुई सकता असिन सांप खास के खा रात समय में मनन का घर भीतर ऐठ जब हुकर अब नहीं खटरा हुई ना असल ठन ओसिन बेला हुकर दस सीठ
12: हो निका वो ये जानकारी संग और संघरियन का प्रतिक्रिया पहरना पाला वो संघरिया राकेश लिखल बाट मार घर चाहे दैलेख हो ओ हमार वो चाहे काल रंगक सांप ब्याला ब्याला में देख पड़ना कर था कई खाली लिखला बाटा
3: ए कलसी मीटर राके चाहे काल रंग का सांप अर्थात हमार देश में पाजीना और सांपन का प्रजाति हाइपर कैली सांप व पत्तार का बात कर ला हूँ वो असीन प्रजाति का सांप सामान्यतया पहाड़ी भूभागोर पाजे था जस्तो संगरिया राकेश दैले कोर कलजे वो पहाड़ी भूभागोर ढ्यूर देख पड़ना कर था वो याकर दशलक भाग सोईना वो याकर बट कर रहा था
12: ओ चौथा चाहे बागे सांप यी सापनका रङ चाहिँ ठ्याक्क बाघनका छालामा देख पर्न रङ जस्ता जो रनाका छन्। कोयाक दशलक ग्रम्या नेपालमा ढिउनी देख पर्छ, तर यी बडा खतरनाक रह हिकनक कटाइसले जोरसे रगत बहनाका छ।
3: ओहोर हाम्रो एकदम सतर्क होसियारी पर्छ। मिना त सकुसा बिसाहानी र तर फेरि साँप दशलक खण्डमा चाहिँ चक्का स्याकल झट्टै उपचार केन्द्रमा जाख, उपचार चाहिँ कराडा र पर्छ, हो कि नाही हुङकुमान?
12: हो निका बिन्दु, लेउटा सङ्घरिया हुक्रा। आज हाम्रा सापनका प्रजातिका विषयमा हुक्रा सक्रिय होइना विषयमा देहल जानकारी कसिन लागल लिखा जिन भुलै विकटी। आजुक फेसबुक लाइभमा अपन बात बाद देलकमा सबको जहान धेर धेर धन्यवाद कटी। आजुक फेसबुक लाइभमा से विदापो मंगना हो कि बिन्दु, समय थियो वराई लागल।
3: होइठा हुङकुमार, लेउटा कविला औरत फरक यही समयमा ऐना बाचा सहित आजुक सर्पदंश विषयमा सञ्चालन करगेलक फेसबुक लाइभमा से मई बिन्दु
12: ओई जनचेतनामूलक सन्देश सँग मैं हूं कुमार थे विदा मांगा छू।
3: नमस्ते। ले आजक फेसबुक लाइव एकदम अन्तर्क्रियात्मक हुई, कतरा जना संगरेन आपन कमेन्ट पठेला कुइटना हूं कुमार
12: भोनिका सहभागिता फे हुई वो जानकारी फे दे गए हमार कबीला हुकर बुझलके हुई कना आशा लागल।
3: हो ना
12: क्या कर मैसेज आयल
13: ए बजार को रही छा का मैसेज पठेला बाट जा हाँ तुहार पड़ोसी बुढ़ाम काका घर में सपुआ देख पड़ल बा मई ओहरे जायटू तू के झट्टई हो ना। ओहो बिंदु बुढ़ाम काका घर में तो सपुआ देख पड़ल बा हूँ बजारू जैटी बा हमरा फिर जई ना हो कि
3: विठा विठा हूँ कुमार जय जय
0: बिन्दु अङ्कुमार हमन बर्दियक परिवेशमा लेख गैला। हाम्रा आज हुकन बीच हुइलक छलफल से बर्दिया लगायत तराई क्षेत्रमा पाजेना सापनको विषयमा जानकारी पैली और कार्यक्रममा बिन्दु अङ्कुमारक संवादमा कुछ लौ थप जानकारी पक्क फे पाजाई।
14: नाता छावा सापन कुछ नि कराइ सम साप कुछ नि करत ल्या उ अपन चल गेल त कुछ कराइल त ओ सक्कु साथ बिखा फे निरट
15: बिखा हो कि नि हो कसी कति दाई
14: ल्या नेपालमा पाजिना बिखा सापनको विषयमा सुन। एक ठोर ठ गरैचा जोन खास कैख रातिक समयमा घरभित्र पैठ सेक्ठ यी कटलस निबठाई फे स्याकट तर कटलक पाछ देही भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेकना मेसे लक्क हो सेक्ठ और रठ डोम जोन बडा रिसाहा मेरिक रठ निकर फाट फुले ठ डोम साँप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास संध्या बिहान देख पर्छ निक्र कटल सेखे लक्वा हुइसेक था ओ और रठ कैली जाटक साँप निक्र कटल कलसे कटलक भाग सुई था ओ बरा कर से बठे था रकट फे पाती रोकर रकट बहना हुइसेक था ओसे क हमार देशक तराई सक्कु भूभागमा पा देना बगोक्ने न फुनकारना बाधे साँप यी साँप दसलक बेरमेन कम खेल पा दे था तर हिकनक कटाई एकदम खतरनाक रहा।
16: बर्खा छाको अनाज झुटिना समयमा सापनको कटाई अथवा दसैँको घटना ढिउर बिना कथा बैहा हो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनको बछारा नासिबेल सापनको दसैँको घटना ढिउर बिना कर्लक पाए
17: झुर जसिन सापनको दसाई हानिकारक नि रह उहो फे यदि सपुवा डस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाइ पर
18: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे सक्दै छ।
1: अठार बेला हाम्रो रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश सुन्टीबाटी
0: सहभागी श्रोता यो विषयवस्तु छलफलकसँग रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशक आज प्रस्तुत यी पहिला पैढारमा छे मै पुष्पा
1: व मै एकराज बिदा मांगती और पैढारमा सापनको कटाइसे बच्दा उपाय विषयमा आको लौ जानकारी लेख ऐनी जोबाटी आजुकलाग बिराटी नमस्ते। रेडियो प्रस्तुतिमा विद्वान पौनाउक्र बटोले बाट उहाँक निजी विचार मान्दैने बा ओ नेपाल सर्पदंश रोकथाम परियोजनाका तरफ से अभिव्यक्त विरत आधिकारिक विचारकेख माना निवेट
19: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत।
20: नरेश सर तपाईँको फोन आउने बित्तिकै म दौडेर आएँ कि खै भाउजू कता हुनुहुन्छ
21: त्यहाँ फलैचामा सुतेकी छिन् बहिनी हिँड्नुहोस् न उतै
20: भाउजू कहाँनिर टोके तपाईँलाई घर वरिपरि त सफा सुग्घर राख्नु भएको रहेछ तर पनि टोक्नु भ्याएछ है तपाईँलाई
22: यहाँ कुर्कुचानेर टोकेको हो नानी उहाँले एम्बुलेन्सलाई खबर त गर्नुभएको छ कति बेरमा पो आइपुग्ने हो
20: नआतिनुहोस् है भाउजू हामी छौँ तपाईँलाई केही हुँदैन बरु खुट्टालाई नहल्लाउनुहोस् र नरेस्तै एम्बुलेन्स आउन समय लाग्ने हुन सक्छ नजिकै कसैको मोटरसाइकल भए त्यसैमा राखेर भाउजूलाई सर्पदंश उपचार केन्द्र लाने तयारी गर्नुपर्छ
21: यति बेला त खाली कुरा पनि दिनु हुँदैन होइन त स्वयंसेविका बहिनी
20: हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो चिकित्सकले नभनेसम्म बिरामीलाई केही पनि खुवाउनु हुँदैन
23: सर्पले टोक्ने बित्तिकै सहज वातावरण बनाउने र सर्पले टोकेको अङ्गलाई स्थिर बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ टम्म कसिएको कपडा गरगहना घडी पेटी औठी आदि भए फुकाली दिएर खुकुलो गराउनुहोस् बिरामी आत्तिए झन समस्या हुने भएकोले बिरामीलाई शान्त रहन सहयोग गर्नुपर्छ कतिपयले सर्पले टोकेको ठाउँ भन्दा माथि डोरीले कसिलो गरी बाँध्ने पनि गर्छन् यसो गर्दा रक्त सञ्चारमा समस्या हुन सक्छ जसले गर्दा सर्पले डसेको शरीरको भाग काटेर फाल्नु पर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ
24: भरपर्दो र सही जानकारी प्राप्त गर्न र नजिकको उपचार केन्द्र कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org अर्थात् snakebitenepal.org मा गई आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ
25: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
26: सूचना सूचना

0: बुका पिएर कबु पेन्सिले रहेठ कबु झलै फटाका आजिठ काकना हो काकना हो बाबा फिर उस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कपी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगला दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल हेरा थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: युनाइटेड एकेडमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो
4: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकेडमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ
3: पढाइ हुने विषयहरू
5: अनिवार्य नेपाली
3: अनिवार्य अंग्रेजी
5: सामाजिक गणित
3: ऐच्छिक लेखाशास्त्र
5: ऐच्छिक वित्तशास्त्र
3: ऐच्छिक अर्थशास्त्र
5: कम्प्युटर विज्ञान
3: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू
5: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि
3: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि
5: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि
3: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म सीमित सीट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ थप जानकारीका लागि 091-560-738 091-561-446 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77
4: युनाइटेड एकेडमी माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली

0: टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैती बा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा तुहार रामपुरान दिदी यह नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाएको आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएको अनल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261

0: मी भया पुग्नु तपदस्ता दरम्यान रसरस अंगनामा ल्यान पुगेसे हिँडेरह
1: एक गति ना हाम्रो सहयोग कैखल डेन्टी बाटी देन मोटरसाइकल घुमाएको धर्ने करिना
0: बैठा बैठा रम्यान रसरस मर्पा छ बैठाई को एकजना ब्रह्म्याना पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोश हुइसेक ना हुइला कोसे पासा से पकड़ का बैठा पर्था का
2: ब्रह्म्याना अगर हुइना कई कमै पकड़ का बैठा टू सुनील जी अपना देशिन मोटरसाइकल स्वयं सेवक हुइला कारण सर्पदंशक ब्रह्म्यान उपचार केन्द्र लैजिना सजिलो हुइल बा
0: एम्बुलेन्स और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकल जो सब कुछ हम सजिला पादी था कतना ठमटा मई असक मोटरसाइकल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो छत्तह पाजिला से ब्रह्म्यान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो हुइना मेरक सुचाक लगक एन्टी भेनम हुइलाक उपचार केन्द्र में लै जाए पर्था
1: अपना उम्र जैने करी ना मई द्वान लगा सके लाजे
0: वहां न कतलक सपक फोटो खींचना बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो हुइला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
2: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाई नहीं तो झील हुई
3: सफर दस डालन कर से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच में सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीवेनम उपलब्ध होना सर्पदम से उपचार केन्द्र में लै जाडारी सप्प कटल से मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेट दिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
7: असार 6 गते पहिलो शनिबार
6: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खट्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
8: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
7: असार 6 गते पहिलो शनिबार
6: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772
9: घरेको भए होइन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
10: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भर पर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज न कुनै फाइनेन्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
9: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
10: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
9: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
10: ई सेवा सबै सधैँ सँगै

0: से कब्बू का पिए रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस गटिलो ठाव से झोला आन से लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बरती रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक्ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
4: टीकापुर नगरपालिका को निःशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउंड बारे अत्यंत जरूरी सूचना टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ तपसिलका ओडाहरूमा सञ्चालन हुने सेवाहरू वडा नम्बर 6 असार 1 गते नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी वडा नम्बर 7 असार 2 गते शक्तिसहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 9 असार 3 गते झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 5 असार 4 गते मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 4 असार 5 गते अश्लेरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 1 असार 6 गते एकतानगर कार्य समितिको भवन वडा नम्बर 2 असार 7 गते विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 1 असार 8 गते गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन वडा नम्बर 3 असार 9 गते रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर 1 असार 10 गते ज्योति नगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर

0: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो।
1: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
0: पढाइ हुने विषयहरू अनिवार्य नेपाली, अनिवार्य अंग्रेजी, सामाजिक गणित, ऐच्छिक लेखाशास्त्र, ऐच्छिक वित्त शास्त्र, ऐच्छिक अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
1: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
0: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि,
1: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
0: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म। सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
1: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठा तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।
5: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
6: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
7: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
5: डेलिभरीका लागि
7: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
5: टीकापुर कैलाली।
0: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98-017-10-672।
8: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजेक 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में अपनक स्वागत बा। खोज खबर से मई गीता चौधरी राम राम। अपनोकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हाम्रो पात्रो ओ नेपाली पात्रो मफे सुनती रहलबाटी। खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से टीकापुर में 5 दिन ने थारू सांस्कृतिक मेला महोत्सव हुईटी। दौलतपुर घटोमा निर्माणाधीन झुलुंगे पुल निर्माण के अंतिम चरण ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के आर्थिक वर्ष 2083-84 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमत लेकर पारित। आप खोज खबर विस्तार में असार के पहिला साता टीकापुर में थारू सांस्कृतिक मेला महोत्सव हुईना हुईवा। थारू टेलीविजन के आयोजना में हुईना महोत्सव असार 3 गते थे से 5 गते सम्म 7 गते सम्म संचालन हुईना बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के सहयोग में टीकापुर के सिटी हल में हुईना थारू सांस्कृतिक मेला महोत्सव बारे आज टीकापुर में पत्रकार सम्मेलन करके जानकारी देगिल बा। महोत्सव में थारू समुदाय के भाषा संस्कृति परम्परा कला साहित्य लोक नृत्य लोक संगीत मौलिक खानपान ओ सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण संवर्धन ओ प्रचार प्रसार करना उद्देश्य लेकर मेला महोत्सव थारू मेला महोत्सव हुई लगलग। थारू टेलीविजन के अध्यक्ष पोखम चौधरी जानकारी दिलबट यी महोत्सव से थारू समुदाय के सांस्कृतिक पहचान हन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में स्थापित कर महत्वपूर्ण भूमिका खेलना के संग सांस्कृतिक पर्यटन के विकास स्थानीय उत्पादन के बजारीकरण उद्यमशीलता के प्रवर्धन ओ स्थानीय अर्थतंत्र समेत टेवा पुग्ना अपेक्षा कैगिल बा। महोत्सव में थारू समुदाय के परम्परागत नृत्य सख्या मघा लाठी लगायत के सांस्कृतिक प्रस्तुति रहना के संग थारू परिकार के प्रदर्शनी हस्तकला प्रदर्शनी पर्यटन प्रवर्धन प्रदर्शनी कृषि उत्पादन प्रदर्शनी स्थानीय उद्यमी हुकन के स्थल तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम समावेश कर जिना जानकारी करागिल बा। 5 दिन सम्म संचालन हुना महोत्सव में प्रत्येक दिन फरक फरक किसिम के प्रदर्शनी तथा कार्यक्रम संचालन कर जिना बा। कार्यक्रम न प्रभावकारी रूप में संचालन करकला गांव घर में बरघर भलमनसा हुकन से समन्वय करलक आयोजक जनैलबा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई धनगरी के सहयोग थारू टेलीविजन प्राली धनगरी के आयोजना मन ऊ थारू महोत्सव मेला शुरू हुई लगलग हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के आर्थिक वर्ष 2083-84 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सभा के बहुमत से पारित हुई बा। शनिवार बैठक प्रदेश सभा बैठक से सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2080 के नियम 38 के उपनियम 4 बमोजिम नीति कार्यक्रम सभा से बहुमत लेकर पारित कर गिल हो। नीति कार्यक्रम न पारित करना आज सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह सभा संबोधन कर लरल ह। तेस्रोचो बजेट लान लगलग प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह सभाना संबोधन के क्रम न सकू प्रदेश सभा सदस्य सरकार ह विश्वासिलो बनाई सकून के सहयोग करलक मन धन्यवाद दिलबट। ढ्यूर कोन से प्रश्न उट्टीरलक सक्कू जिम्मेवार हुईपर्ना बटुईटी सरकार व संसद एक होकना आग बरहबेर विपक्षी दल के नेता कलक विषय में फिर संबोधन हुईना उहां जानकारी करेलाबाट। जेठ 18 गते प्रदेश सरकार के नीति कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख नजीर मिया प्रस्तुत कर लरल। नीति तथा कार्यक्रम के ऊपर 21 जना प्रदेश सभा सदस्यों का विचार धरलबाट। कैलाली के टीकापुर बर्दिया के दौलतपुर जोना कर्णाली लद्यामना अत्याधुनिक झुलुंगे पुल निर्माण अंतिम चरण में पुगल बा। टीकापुर नगरपालिका वडा नंबर 5 दौलतपुर के कर्णाली लद्यामा निर्माण हुई तिरलक झुलुंगे पुल के काम अंतिम चरण में पुगल हो। 10 महीना आगथे से निर्माण शुरू करगिलक थानी निर्माण सेवा काठमाण्डू के साइट इन्चार्ज विक्रम बस्नेत के अनुसार पुल निर्माण के काम अंतिम चरण में पुगल बा। बस्नेत असार पहिल साटा नै पुल हस्तांतरण करना बटुलेबाट 15,73,00,000 लागत में बनलक पुल के लंबाई 482 मीटर चौड़ाई 1 मीटर 60 सेन्टिमिटर रहलबा पुल निर्माण सम्पन्न होस्याकल्पा छ। स्थानीय बासिन्दा हुकनके आयोजयट सहज हुइनाबा कलसे टीकापुर र राजापुर क्षेत्रमा व्यापारिक गतिविधिमा वृद्धि हुइना स्थानीय हुक्र बटुइलेबाट। पचपन्न वर्ष उमेर वा 30 वर्ष सेवा अवधि पूरा कर सेकलहन अवकाश देना कैकन सरकार तयारी। पार्गिलक निजामती सेवा विधेयकीय मस्यौदा से कर्मचारी वर्ग तरंगित बनलबाट प्रस्तावित व्यवस्था से कानून के रूप लिहबेर अवकाशमा जाइपना अवस्थामा रहलक कर्मचारी असन्तुष्टि व्यक्त कर लागलबाट अवकाशमा जाइ नै पर्ना कर्मचारी हली बढ़ुवा पैना सम्भावना वा जागिर अवधि बढ़ना कारण से सकारात्मक व्यक्तिबाट। पचपन्न वर्ष उमेर वा 30 वर्ष सेवा अवधि व सचिव मन 3 वर्ष पदावधि के व्यवस्था करगिलक निजामती सेवा विधेयक के मस्यौदा से असार भीतर कानून के रूप लेल से 52 सचिव अवकाशमा जौयाबाट। वस्तक उमेर वा सेवा अवधिके लघु प्रावधान से 268 सहसचिव विदाहिटीबाट सकुटहम कैकन करिब 10,000 कर्मचारी एकसँग अवकाशमा पठाइनाकै निजामती सेवा विधेयकके मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तयार करगिलक हो। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पा छैनी बाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ। प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
4: ईसीजी सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 98484 27359 र 98842 73 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मन्दिर नजिकै।
5: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो? पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
6: अरे का करुरी बुढिया कठुवा खोजत खोजत परे सान हो गेल बाटु। मिल्बो मिल्बो नि करत का कैन हो का
5: मिस्तरान वर्जन हुकन घर हेरो न पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्टफे पटानी हुइन कि गुंगुआ बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए।
7: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार से लगा जाए।
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98484 43 26।
9: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
10: असार 6 गते पहिलो शनिबार
9: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रायसिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
11: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
10: डाक्टर आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
9: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
0: विश्राम पाछा खोज खबरमा फेरफेर स्वागतमा मधुपर्क सम्मान 2083 चाहिँ तीनजना वरिष्ठ साहित्यकार सम्मानित हुलबाट सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा ओकनहन नगर सहित सम्मान पत्र लिएर सम्मानित गर्लखुइट। सम्मानित हुनामा वरिष्ठ साहित्यकार यादव खरेल, वरिष्ठ कथाकार भावपन्थी ओ मधुपर्क प्रतिभाषी डाक्टर गीता त्रिपाठी सम्मानित हुलबाट हुकरण जनही नगद 50,000 रूपियाँ ओ सम्मान पत्र लिएर सम्मान करगिल खो। गोर्खा पत्र संस्थान के साहित्यिक मासिक पत्रिका के मधुपर्ग से हरेक वर्ष सम्मान प्रदान करतीएल्बा। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा देश के साहित्य संस्कृति ओ संगीत बल्गर हुइना हुइलकुर्से अन्य पक्ष सेफे बल्गर हुइना बटुलबाट सम्मान कार्यक्रममा उहाँ गोर्खा पत्र संस्थान से भाषा साहित्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्दै रहेक बटुटी याकर समृद्धि केलाग सक्कुनके साथ आवश्यक रहलक बटुलबाट। वरिष्ठ साहित्यकार यादव खरेल गोर्खा पत्र संस्थान के साहित्यिक मासिक मधुपर्ग के निरन्तरता से साहित्यकार हन उत्साहित बनेलक बटुटी याकर निरन्तरता के शुभकामना व्यक्त गर्लबाट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मन्त्री खगराज पौडेल नेपाल हन आरोग्य पर्यटनकै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य के रूपमा स्थापित गर्न बटुलबाट पर्यटन नेपाल पर्यटन बोर्ड ओ इस्पा संघ नेपाल के आयोजनामा विश्व आरोग्य विश्व दिवस के अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँ ऐना 10 वर्ष हन आरोग्य दशक के रूपमा मनाइन तयारी हुइटिरलक जानकारी गरेलबाट। मन्त्री पौडेल आरोग्य दशक मनाइक लागि आवश्यक नीति तथा रणनीति निर्माण प्रक्रिया आग बढ़तिरलक बटुलबाट। आरोग्य पर्यटन अध्ययन हन होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान मार्फत स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह विस्तार गर्न तयारी हुइटिरलक उहाँके कहाइबा। मन्त्री पौडेल नेपाल आध्यात्मिक भूमि हुइलक उहाँसे यहाँके हिमाल लद्या वन जंगल ओ प्राकृतिक वातावरण से मनिन्हन आध्यात्मिक शान्ति ओ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न बटुलबाट। कार्यक्रममा इस्पा संघ नेपालकी अध्यक्ष सुरेश पुरी विश्वभर करिब 70 करोड़ मनै आरोग्य पर्यटन से आबद्ध रहलक उल्लेख गर्दै इस्पा न केवल विश्राम ओ मनोरञ्जन के माध्यम के रूपमा नै होखन रोग के रोकथाम ओ स्वस्थ जीवन शैली के महत्वपूर्ण अंग के रूपमा बुझपना बटुलबाट। उहाँ इस्पा तथा आरोग्य क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लागि स्पष्ट कार्यविधि अन्तर्राष्ट्रिय स्तर के सेवा प्रणाली तथा 3 महीना के व्यवसाय तालिम ओ प्रमाणीकरण प्रणाली आवश्यक रहलक उल्लेख कहलबाट। नेपाल सरकार ऐना आर्थिक वर्षभित्र मुलुकके कुल जडित विद्युत उत्पादन क्षमता 5,335 मेगावाट पुगैना लक्ष्य लेलबा। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सार्वजनिक करलक वार्षिक विकास कार्यक्रममा 1 वर्षभित्र थप 1,040 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता थप्ना उल्लेख कैगिल्बा। निर्माणधीन तथा निर्माणकै अन्तिम चरणमा रहलक जल विद्युत आयोजना हन समयमा सम्पन्न कर्कन विशेष विश्वास गर्न जनागिल्बा। निजी क्षेत्र से निर्माण हुइतिरलक आयोजना फे सहजीकरण कर्कन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न लक्ष्य लेगिल्बा विद्युत प्रसारण पूर्वाधार विस्तार हनाथे उच्च प्राथमिकता मनधर गिल्बा वार्षिक कार्यक्रम अनुसार 66 केवी प्रसारण लाइन 7048 सर्किट किलोमिटर से बढ़ाकन 7808 सर्किट किलोमिटर पुगा जैनाबा। हुम्लाके सर्केगाट गाउँपालिकामा पर्न थार नामन कर्णाली करिडोर उपर्से खसलक पठा लाखन एक किसैके ज्यानगिल्बा सर्केगाट गाउँपालिका चार गैरी सायाके 15 वर्षीय पवित्र साउट आज बिहानक गैया चराई बनोमन गैया चराई गिल रह करिब 10:30 करिडोरके उपर्के भागसे अचानक खसलक पठा लागबेर उहाँकै घटनास्थलमा ज्यान गेलक जिल्ला प्रहरी कार्यालयके प्रहरी नायब उपरीक्षक शंकर पोखरेल बटुलेबाट। खोज खबरमा फेरफेर विश्राम विश्राम पा छैनिनी बाटी सुन्तिरहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
12: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
13: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किङ, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिण्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585088।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैती बा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। कैलालीकै विभिन्न बनोट क्षेत्रमा कर्गिल अतिक्रमण हटेन अभियान अन्तर्गत 47 थो कच्ची तथा पक्की संरचना भट्काइल बा। करिब 35 हेक्टर बनुवा क्षेत्रमा बनागिल संरचना भट्काइल डिभिजन वन कार्यालय कैलालीकै वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत राम तिवारी ठाकुर जानकारी दिलबाट। उहाँके अनुसार डिभिजन वन कार्यालय कैलालीकै वरिष्ठ वन अधिकृत जीओज यादव के नेतृत्व में खटगिलक टोली जिला के गोदावरी नगरपालिका अंतर्गत भीमदत्त राजमार्ग आसपास मन बनुआ अतिक्रमण करके बनागिल घर टहरा ओ अन्य संरचना भटकागिल हो। समाचार के संग 5 बजे खोज खबर ओराइल जैती बेटी खबर के मुख्य शीर्षक फिर से एक चो। टीकापुरमा 5 दिने थारू सांस्कृतिक मेला महोत्सव हुइटी। दौलतपुर घटुआ मन निर्माणित झुलुङ्गे पुल निर्माण के अन्तिम चरण। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के आर्थिक वर्ष 2083-84 के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमत लेखन पारित। लिता आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 6 बजे खोज खबर सुन सेक्बी। आवक खोज खबर समय गीता चौधरी विदाई टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि। राम राम।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्रेक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।
4: बाबु अपने कलका लाइट रही, अपने काकर कलका लाइट रही, ले भुइया में के हो काकर भुइया में ढनवा नाली बाटी।
5: सुन ना दादू, हमरा दुनु जना बना में घास काटा रही, मर संग भी सब पका दा की ना दादू, हाली का करना हुई यही ना सत्य है, उपचार के नौ पुगा कोयला से मिले रहा।
4: ओहो, ऐसी बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठे नहीं हुई। यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा कौन कही दादू अपने नहीं आता है ना संघरिया ध्यान दी। हेलो मुकेश, तू जत्ते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ, यहाँ एक जना बाबू है ना सपुआ काट के ना इमरजेंसी पर गिन, तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल, राजमार्ग 400 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा। मुकेश जत्ते ही आओ, हाँ सबको काम छोड़ खा
6: बेटा संतोष, मैं मोटरसाइकिल लेके आई डॉक्टर।
4: सुनी बाबू, सपो कटलक मने है ना जत्रा साइकिल जत्ते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता है, ऐसी बेला में सबसे जत्ते हुई ना यातायात के साधन बाजे पड़ता। यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेरे से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुगाई पड़ता। तू मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भर पर मैं संघरिया, मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच से बैठा कर ना उपचार केंद्र पुगा डालती हूँ, अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
5: लगा दे दादू जाए।
7: काट करी 7-10 से मोटरसाइकिल स्वयं से दी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई।
8: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप डस लक मनिन बचाई सक दी था, वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर सक दी था, सांप डस लक मने है ना छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी, यही ले वो मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था। विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
9: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
10: ए रोका रोका रोका,
11: के भयो, किन कराएको यस्तो
10: दाई? यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
12: डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड। यति मात्र होइन, लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
10: हो र? हो नि, एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड।
13: ओहो, आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्पेक्ट 1-3 हास डायल गरी वा एनसेल एपमा गई लिनुहोस्। एनसेल, नेपालकै लागि।

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैकी बा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ाल लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कई था कभू पेंसिल हेरा कई था कभू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिये रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनंद झोला दस कटरस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: गरेको भए हैन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
4: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बीमा कभरेज न कुनै फाइनान्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
3: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
4: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
3: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
4: ई सेवा सबै सधैँ सँगै
5: सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि त अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसके कसो कालो छिटो नलाग्यो
6: होइन चाहिँ जो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेको छ के भएको छ तलाई
5: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसके छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भन्यो म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
6: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
7: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
8: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ठकरला रोड टिकापुर कैलाली
9: सूचना यही मिति 2083 साल जेठ 31 गते का दिन जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर ओडा कार्यालयको आयोजनामा देउदा तथा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम जानकी गाउँपालिका 9 अमरावती स्थित कृषि हाट बजारको प्रांगणमा हुन गइरहेकोले सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई कार्यक्रममा उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण तथा झाँकीहरू स्थानीय देउडा गायकको बेजोड प्रस्तुति स्थानीय पञ्चे बाजा सखिया नाच हुर्के नाच लगायत विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीहरूको प्रस्तुति रहनेछ जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर ओडा कार्यालय खैरी फाटा कैलाली
10: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: जारी।
1: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमबाट जनहितमा जारी सन्देश।
2: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुही, टीकापुर बाजार में देखनु तुही।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3, 4, 5, 6 और 7 गते।

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारो सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिप्पर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी टिकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
4: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकरछु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।
6: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: চেলি হেদি ধৈ বালাই লোড টি পড়ে বড় কে ব্যাংকো বিবরণ দিয়া পয়সা খাতা মি আই জানছ বড়
1: ধৈ ধৈ বা তুমলে লোড টি ভর রাই থ্যাব
2: আছি না কে হো রে চেলি লটারি পড়া তে নিগো হো বা
1: কবই নবরিয়া লোড টি কসরি পড়ন ছ বা ইশা মেসেজ হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ভাইবার কাইমিলে আয়ালে কবই জনপতিয়া ফোনে আয়া লাগাই আপনো বিবরণ কবই জন দিয়া কসাইলে বিত্তীয় সংস্থালে তোমারও পাসওয়ার্ড পিন আদি কবইলে মাগদৈন ইয়ো তো ব্যাংক আফুইলে মাগদৈন
3: সতর্ক রাউ ঠগি বটে বচাউ
1: সিদ্ধার্থ ব্যাংক পঠিয়াই জনহিত মি জারি সন্দেশ
4: সিদ্ধার্থ ব্যাংক সম্বন্ধ সদাই ভরি লাই
5: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
6: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
5: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
6: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
5: अब त म ढुक्क
7: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
6: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
8: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आफ्नो भवनसे सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी गराइदिए सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से सन्ध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्रा सम्पर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9848423059

0: बुका पिएर कबु पेन्सिले रहेठ कबु झलै फटाका आजि काकना हो काकना हो बाबा के ओस्ता बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहेर
1: ओहो ये बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर भर आई राहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कई ठ कबु पेन्सिल हेरा कई ठ कबु झोले फटा कई ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेन्सिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
4: असार 6 गते पहिलो शनिबार
3: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौँ नजम्ने तालुको रौँ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
5: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
4: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
3: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 98688-0008 र 98253-6772

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3, 4, 5, 6 और 7 गति।